माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: अब अमर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ न बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। सर्च करें सिटीजंस एडवाइस।
1: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
2: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
1: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
2: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
1: दर्शन पण अने यूरोप पण।
2: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
1: कॉल 020-8900-2323। द स्टार टूर्स,
2: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
3: नोटिस द चेंज इन योर हियरिंग? We'll get a hearing check from Specsavers. Oh, not sure where to start? Well, we're very flexible. Book one online, on the phone, on your lunch break, on Saturdays, on the same day if you're lucky. Oh, you only miss the odd word. But what if the odd words you're missing are nice ones like love you, or important ones like duck? Oh, too expensive, is it? All right, we like you. We'll do it for nothing. For free hearing checks, should have gone to Specsavers.
4: Welcome back to Costa Coffee's Iced Coffee Forecast, here to update you on the week ahead. Today, there'll be unexpected adventures moving in from the east, with high chances of bumping into friends and conversations that go on longer than planned. Later this week, expect a refreshing iced coffee, made for picnics with picky bits and nowhere to be until 6. Because whatever the weather, with a Costa iced coffee made with heart in hand, the summer moments we love last. Costa iced coffee, made for summer.
5: Evening. How's your night shift going? Just a quick check-in from Acorn Insurance, the taxi specialists. We've been by your side for over 40 years, helping new drivers earn a no-claims bonus from day one and accepting up to 9 years no-claims from veteran cabbies. That's why we're the largest taxi insurance specialist in the UK. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Bye for now. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
6: Scoop up the savings this summer with Lidl Plus. Pick up strawberry and chocolate ice cream cones, chocolate almond ice creams and a mix of exotic and berry fruit ice lollies. Now 20% off with Lidl Plus. So the savings taste even sweeter. Lidl, more to value. 18 plus GB only while stocks last. Terms apply. Selected lines only. See lidl.co.uk/lptv. Offer ends 20th of May.
7: This is Sunrise, the UK's biggest. Asian. Mix.

0: शबनम साही।
1: इससे ज्यादा फिल्मी कहानी अगर आपको कहीं मिल जाए ना, मुझे मत बताइएगा प्लीज।
0: नेक्स्ट ऑन सनराइज रेडियो। द सनराइज ब्रेकफास्ट शो ब्रॉट टू यू बाय वेल बेबी एंड वेल किड, आइडियल विटामिन्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम विटाबायोटिक्स, द यूकेस नंबर वन विटामिन कंपनी, अवेलेबल फ्रॉम फार्मेसीज, सुपरमार्केट्स एंड विटाबायोटिक्स.com। फॉर नंबर वन वेरिफिकेशन सी विटाबायोटिक्स.com।
2: लुकिंग टू गेट बैक इन स्टडी? चूज ग्लोबल बैंकिंग स्कूल। वी डिलीवर अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन अकाउंटिंग, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हेल्थकेयर, tourism and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face to face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
3: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
4: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
3: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
4: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे,
3: दर्शन पण अने यूरोप पण।
4: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
3: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
4: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
5: You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and...
6: It could be you.
5: Yeah, what he said. Lotto. From the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
7: From everyday meals to special moments, quality makes the difference. Bring a little gold to every meal with Canada Gold Atta, the premium choice for every generation. Soft, light chapatis made from 100% whole wheat and loved by all ages. The official flour supplier to Ambala Foods. Pick up a bag of Canada Gold at your local Asian retailer. Canada Gold Atta, the gold standard of chapatis.
8: At Aldi, we think low prices are for everyone. And boy, do we mean everyone. You, your nan, your cockapoo, your ex-situationship, Barbara from next door, traffic wardens, Piers Morgan, even that annoying guy James from finance. Yep, low prices should be enjoyed by all, not just those with a membership, what's it? So Aldi don't do one. No points, no cards, no faff. Aldi, which cheapest supermarket? Even without a loyalty thingy.

दर्ज करते हैं। हमें शिकस्त हुई है ये हम भी जानते हैं, हम आज सो न सकेंगे ये तुम भी जानते हो। अर्ज किया है हमें शिकस्त हुई है ये हम भी जानते हैं, हम आज सो न सकेंगे ये तुम भी जानते हो। मगर ये बात कि ये शाम आखिरी तो न थी, ये बात हम ही नहीं दूसरे भी जानते हैं। Fantastic. श्री इन स्लाव, पूर्णिमा इन विज बीच, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल मैसेजेस। सुनिधि इन रेडिंग, वर्षा इन आइजलवर्थ, अनिल इन वुल्वरहैम्पटन, थैंक यू वेरी मच। यहां भी आप सुन रहे हैं, वेलकम।

0: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, गुलाम अली साहब की आवाज में ये गाना सनराइज रेडियो पर इस घंटे का लिसनर्स चॉइस।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
0: किड्स रेडी फॉर टुडेज हनुमान स्टोरी ऑफ द डे। टू सेव लक्ष्मण हनुमान कैरीड एन एंटायर माउंटेन बिकॉज ही कुडंट फाइंड द राइट हर्ब। लेसन, व्हेन इन डाउट गिव योर बेस्ट एफर्ट। Don't miss the next adventure. Watch Legend of Hanuman every day at 5:30 p.m. only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at Southall.

oldtravel.co.uk Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर स्विचिंग गियर्स नाउ मूविंग ऑन स्विफ्टली फ्रॉम चुपके चुपके इन अ महफिल टू लुट ले गया इन अ नाइट क्लब इट इज अ फ्राइडे राइट

0: इश्क की चांदनी से बना चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल, फहीम अब्दुल्ला, द टाइटल ट्रैक फ्रॉम दिस फिल्म। सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर। Don't miss South Hole Travel special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southholetravel.co.uk today. Ab chand ko jab yaad kar hi liya hai, let's stay with the moon on the other side of the break. What do you say? Alka Yagnik from the film Zakhm.
1: Shabnam Sahi on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Nothing beats the feeling you get when dancing. So, when you feel like dancing, dance. The stage is set. The dancers are ready. Are you? India's best dancer season 5. Coming soon on Sony TV.
0: It's simple with Dimple. Self-drive cars, vans, 9 or 17-seater minibuses available to rent for leisure, pleasure, business or holiday. At very reasonable and competitive prices. At prices lower than the rest. Hire for a day or as long as you want. For UK or Europe at a price that's right. T's and C's apply. It's really simple with Dimple. Visit dimplemotors.co.uk and book online or call 0208-205-1200 or WhatsApp 07951-885-022. अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
0: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
0: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सड़ा सोना
2: वसीम ज्वेलर्स।
3: रामदेव गरम मसाले, खुशबूदार सांभर मसाला, मजेदार।
4: और खाने का हमें है
5: कब से इंतजार,
3: चटपटी चाट छोले, हर डिश पे सब वाह वाह बोले। रामदेव गरम मसाले हैं बड़े अच्छे।
6: They say go big or go home, but now you can go big at home with the Big Arch on delivery. When you're hungry for something big, like really big, Big Arch for big McDonald's hunger. Order on the McDonald's app. Served from 11 a.m. Upcharges and fees apply to delivery orders. Subject to availability. Price and participation may vary.

0: वो। हमको कल की फिकर सताती,
1: कहां से आया था वो,
0: कहां से आया था वो, छू के हमारे दिल को कहां गया, उसे ढूंढो। Three idiots. Rumor has it that Vicky Kaushal will probably be joining the sequel, tentatively titled Four Idiots. Rajkumar Hirani and his writing partner Abhijat, busy putting finishing touches to the script, to the screenplay right now. Amir Khan super excited about the sequel. Are you? Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा listeners choice.
2: Listeners choice brought to you by Colors TV.
3: बहुत हुआ setback. अब होगा मेरा comeback.
0: A dream waiting to be revived. Watch Dr. RMB Monday to Friday 7 p.m. only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. कितनी खूबसूरत लाइन है, आई जस्ट कंप्लीटली फॉरगॉट व्हाट द नेक्स्ट लाइंस वर. हमको कल की फिकर सताती, वो सिर्फ आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुलकर जीता था वो. अब याद आया है. देखिए अरिजीत तो हम आपको सुनवा के रहेंगे. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग. तुम्हारा मेरा मिलना लिखा तो होगा कहीं, नसीब का ये सितारा मिला तो होगा कहीं.

0: कोई रुमाल।
1: वाह, दिल मेरा तेरे इतर में डूबा जैसे कोई रुमाल हुआ है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वरुण धवन एंड जानवी कपूर, टू स्टार किड्स हु आर स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट। दैट्स द इंप्रेशन आई गेट। कितना खूबसूरत है ये गाना। न जाने क्यों है हम नशी, है मेरे दिल को ये यकीन कि तुम जो संग हो बिगड़ी बातें सारी बन जाएंगी, तुम जो हंस दो रूठी रातें सारी मन जाएंगी। एब्सोल्युटली स्टनिंग।

0: Kavita on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Nothing beats the feeling you get when dancing. So, when you feel like dancing, dance. The stage is set. The dancers are ready. Are you? India's best dancer season 5. Coming soon on Sony TV.
1: अब अमर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ ना बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। Search karein Citizens Advice.
2: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk. Hey!